बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पै आले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ

भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वडियाई ज्यो तिस भाव सोई करसी फिर हुक

है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताव तनक मैं हर हो।

कृपा करनी जी समुचिया सेवा बाणी बहुदया होया पुल चुग दी खेमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भावाइया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनिया दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुर सिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद नी देख।

गै मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आ गया।

रे तुमरी कृपा में सुकने रे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्रधारी, तुम ते वह स्व आज्ञाकारी।

अष्टपदी दिप्रसाद क्षत्रिय मृत खाहे तस ठाकुर को रखमन माहे दिप्रसाद सुगंध तन लामे तुसको सिमृत परमगत पावे दिप्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याय सदा मनंदर दिप्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तस रसना दिप्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यामन जोग दिप्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तब्र लुभावे जे प्रसाद सुख से जय सोई जय मनाड पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तो सब कऊ मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावत सराम सनेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको ना बहुचे मन सासा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आल सुखी जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मनाठ पैर कर तुसका ध्यान जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सासा चेतारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्रा है गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करण रात जय प्रसाद वेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता शिवराज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपा जप सोए आप जपाए जपै सो नाहू आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दे हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्वधान प्रभ तेरी मया भो कशुना किन्हु लया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नानक इनका कशुना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमिता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साधक संग मुखु जल होत साध संग मल सगरी खोत साधक संग मिटे बिमान साधक संग प्रगटा सुगयान साधक संग विजय प्रभ रेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग एक ब्रजतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावे साध संग अस्तित्व मन पावे साधक संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग सेव नहीं बैर साधक संग ना बिंगा पैर साधक संग ना ही घमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हो ताब साधक संग तजे सभ्या वैपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग ना कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग आजार सहाय साधक संग बसे तान उचे साधु कै संग महल पहुंचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु कै संग सो धन बाब है जिस तंते सब को परसाव है साध संग धर्मराय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सबर जनम साधक संग नहीं कशकार दर्शन भेट तो होत निहार साधक संग कलुकत हरा साधक संग नरक पर हर है साधक संग इहा उहा सोहेला साध संग बिछर तर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधर बसा
नानु कुदर साधु सुन रसा साधु संग सुनो हर डाओ सा संग हर के गुण गाओ साधु संग न मंते बिसरा सा संग सर पर निस्तरा साधु संग लगे पर मीठा साधु कै संग घट गए ठीठा सा संग भया गया गारी सा संगत भई हमारी साधु संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साधु की महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बखियाने साधु की उपमा तेह गुण ते दूर साधु की उपमा रही भरपूर साधु की शोभा का नाही अंत साधु की शोभा सदा बेअंत साधु की शोभा ऊंचते ऊंची साधु की शोभा मूंछते मुची साधु की शोभा साध बन आई नानक साध पर भेद न पाई सरोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुदा कौ खोदा कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सह सुबाहु ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे भैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रकाश जैसे तरु प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी का राह अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना सप्ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते गज बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

का निर्मल मंथ, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है।

ब्रह्म ज्ञानी किमित गौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी गंतना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आम रंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि सलोक और ताराए जो अंतर नाम सर्म पिख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पात्र रूप न पिख नेत्र साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू के निंदा सबते जाने आप सुख मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मंदे ठराए इंद्री जित पंच दोखते रहत नान कूट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सोहो जिस सुप्रसन्न मिशन की माया ते हुए पिन कर्म कर तो वह नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाशे केवल भगत कीर्तन संग राचे मंत्र अंतर सिमरण गोपाल सब उपरोपत कृपाल आप दृढ़ वरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंते मिनसे सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सा संग पाप अमल को वह तिस भगवती की मत उत्तम हो वह भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र अर्पय भिषण प्रीत

मैं जो जो जपैत सगी गत हुए सा संग पावे जन कोय कल कृपा अंदर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्वरो का अवगत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कहूँ जुगत के तेना पाइये धर्म नानक तस्मिल जिस लिखिया तोर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दाद संदर पाए धन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्गे प्रमान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सकल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नान ग्राम दास प्रभु की आज्ञ आत्म हेताव जीवन मुक्त सब कहा वह तैसा हर्ग तैसा शोक सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानक पुरकिये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊं जित जित कर राखे तैसा दिन नाम आपे करण करामन जोग प्रभावे सोई फन होग।

कबहू सर्प की उतरवार, कबहू होए बह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीर्त में आवा है, कबहू भला भला कहावे, ज्यो प्रभु राखे तभी रहे गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बखियान, कबु मोहन धारी लावे ध्यान, कबु ताट तीर्थ स्नान, कबु से साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हास तपतंग हुए जिया अनम जोन भरमे भरमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावा, जो पर भावे तम न चा तम न चावे, जो तस भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोय, कबहू सा संगत पावे उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, मंदन नाम रत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म का संग, ज्यो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु के सदगुरबान। सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तरे, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती अवस्मान, जो जाने में जबरमंत सोहबत विष्टा का जानता इसको कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे धन भूमगा जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा सिख हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे, धर्मंता कर गरबावे त्रिन समान कछ संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख पर करे आस बल भीतर था का हुए विनाश, सप्ते आप जाने बलवंत खनमे हुए जाए बसमंत,

अष्टपदी मानु की ठीक है प्रीति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए अगाए पौर्ण दृष्णा लागे आए मारे राखे एक हुआ मानु कह कुछ नाई हाथ जिसका हुक्म भू सुख हो जिसका नाम रा कंठ परोहे सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार।

सप्तो चंद्रमण करणी कर कृपा सौ नाम दिया नानक सो चंद्रमण थिया जाके मन गुरु की प्रतीत तिजन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एको सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सदमु कहत

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चल करे कर वाहे पूरे अपूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे भाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंद नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरियां सब भवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा सबने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए ते से सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश।

विचार अष्टपदी। संजना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरूपाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, कर्ण का अनु स्वप्रभ समरथ, दृढ़कर गहो नाम रथ, ए तन संचो व भगवंत संजना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार गुण उठता मैं सो तन हर से बाते पावे, जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करणी सा शोभा बज हर की सरणी, अनुग भावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए, सर्व निदान मेरा नाम निदान जप नानक दरगे प्रमाण, मन प्रबोध वर कह नाये दैद स्थावत आवा ठाए, तागो बिघन ना लागे गोए, जागे हृदय बसे हर सोए, कलता ती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ छाए पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म बरगास, तितकर जाए बसे बनासी कहो नान काटी जम फासी, तद विचार कहे जन साचा जन परे सो काचो काचा, आवा गमन मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव, यूं रतन जन्म का हो उदार, हर हर सिमर प्रार आधार, अनुग भावना छुटन हारे सीमृत सास वेद विचारे,

दर्शक होए मन भिक्षे साध चरण तोए भक्त जना के मंत्रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ शांत दीन दयाल भगत।

अपन खेलावगर देखे गैल संकोच चेतो नानक का। जय अवगत भगत आप जय बसरे पासार संत प्रताप धूमपा का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बही बनी आपे कौतक करे आनंद चो जा पे रस भोग।

जो जानेत सदा सुख भया मिलाय लाय प्रभ सोयो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति सदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जनामन का यह स्वभाव जन के संग चित आवे।

शरणानुगतेयाय जिस मन बसे सुने लाय प्रीत तजने आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण तागा दुख निवारा दुराव दे तत्काल उदार है निर्मल शोभा अमरता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग विनसै वह भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते बुझता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

जाई तीर्थ नावा जेत सुपावा विण पाने के नाय करी जेती सिरठ उपाही वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी

मन की गद कही न जाए, देखो कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन का बह करन विचार।

तदनिंकार असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूर मोह पक्षार।

निरंकार असंख मूर खांध कहोर असंख चोर हराम खोर असंख गमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मिले शुमल पाख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह

चरी छंद चले हैं थले हैं अपीत हैं पे हैं प्रभु हैं अजू हैं देश हैं पेस हैं पजंग प्रयास छंद गादे बादे नंदी स्वरूप नमो सरमाने समस्तिन धाने

भगता सर्वंग जगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत वे प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त अजोन पुरखे अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर बिराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाग करे रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मुहूर्त अजोन आद असेख देश और न पेह से जाग कर रूप रेख न राग जतर

है प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं ने नामे कामे पजहं प्रयाशंद। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले। चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर

हैं पवित्र परथी से अधि से अदृश्य अकृष्य भगवती शांत वह प्रसाद कहते के अछिज देसे के अभिज भिहसे के अगंज करमे के अभंज भरमे के अभिज लोक कै के अदित सोक कै के अवतूत वर्ण है के विभूत कर्ण के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपह अनुपय

तनल जुमाल है। गनी बल खिराज है, गरीब बोले वाज है। हरी फुल सिकान है, हीरा सुर फिकान है। कलंक प्रनास है, सबातुल निवास है। अगंजल गरीम है, रिजय करी रहीम है। सुबाह तुल जुबा है।

प्रणाम अंश जगात आज नात अंश जगात हर रज बात अंठ भंडार अंठट अपार अडीस धर्म अत तीर्थ कर्म अन वरण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत वे प्रसाद करुणालय है हर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेव सुर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वे उबारण है तृत के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वे सुर है जगते सुर है ब्रह्मंड से है खल खंड से है परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरण ही तृत है मते सुर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वम्पर है करुणालय है निरप नायक है सर्व पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार्य है हर्ता हार है

कह पूजन तायो। कूर क्रिया उर देव सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। को बतान को पूजित है पास को, मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर देव सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की।

शंकर इकैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारे सिख संग्रह दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मिलेश करो रन कहता जे अहित तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुआ मरे पुरख दमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह आय है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टारे तद काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताव तनक मैं हर हो रिद

जाय। मन तो हो शब्द लागो हर सेव रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसाहिब जाय। जियहु मैले बारहु निर्मल, बारहु निर्मल जियहु तां मैले, तिनी जन्म जुए हारिया,

0: पढ़ीजे ते बरस बरस पढ़ीजे ते मास पढ़ीजे ते आरजा पढ़ीजे ते सास नानक लेख एक गल और हमें चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया चेता खड़िया बहुत।

सुखियन मह सुखिया तू कहिय है, दातन मह दातन सिर दाता, तेजन मह तेजवंशी कहिय है, रसियन मह राता, सूरन मैं सूरा तू कही है, भोगन मैं है भोगी, ग्रस्तन मैं तू बड़ो ग्रिस्ती, जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कही है, आचारण मह आचारी, शाहन मह तू साचा शाह, व्यापारन मह व्यापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी के तक गनी न जाइए, गण ना सकौ सीका।

जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता इस नानन मैं इस नानी सिदन मैं तेरी प्रभ सिद्धा करमन सिर करमा आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा

नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी कुदरत कवन हमारी।

अगम उस तत् कामना करी जय करते पेख रहे बिस्मार हाउ सुखियन मैं सुखिया तू कही अह दातन सिर दाता तेजन मह तेज वंशी कही अह रसियन मह राता सूरन मह सूरा तू कही अह भोगन मैं भोगी ग्रस्तन मह तू बडो गृहस्थी जोगन मह जोगी करतन मैं तू करता कही है

मुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेट तरी भुख चार पदार्थ आइटमां सिद काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण दे उतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहा पुन दान पूजा परमेसर हर कीर्त तत विचारे गुण गावते अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्जर ओ कनक कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई रहा जग झूठे को सांच जान कासो रुचि उपजाई धीर बंद सिमरियो नहीं कबू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैंने इस दिन छुट्टी ना मन की काई कहे नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एको ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वाह कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काहे रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो रहा पंडित होए कै वेद बखानै मूर्ख नाम देव राम वै जानै कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही राम राम संग नाम देव जन को परतग आयाई एकादशी व्रत करे काहे को तीर्थ जाई भणत नाम दियो सो करता सो मत पै सिम गुरमत राम कहे को नाम बैकुंठ गए तीन छंदे खेल आछे राव कुंवर के कर हांडी आछे राजा के घर सांडी गो

के घर हींग आशय पैसर माथे सीग गो देवल मदे लीग आछे लीगा सीग हीग गो तेली कह कर तेल आछे जंगल मदे बेल गो माली के घर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गो बेंदे आछे गोकुल मदे श्याम गो नामे मदे राम आछे राम श्याम गोबिंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दोप देखो अंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहा नाना ख्यान प्राण जसी उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर कोट तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जे त्युपाम नानक कृपा करी जहर जिन को ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो राम तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देवो जिन यह हर मीत मिलायो किंचिन किंचत कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस ते आयो जन नानक कहो हर भेटे स्वामी दुख हो मैं रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे को निंद करे हर जन की अपना गुण ना गुवावे रहा जो किछ करे सो आप

जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला, घर पहला एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत आजुनी सह भंग गुर प्रसाद, जक अर्ज गुफ्तम पीस तौ दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बैब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफत दिल हेत ना दानी राव, जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस, दस्तंगीर अखर ब्यावतम कस ना दर्द चू सबद तकबीर, सब रोज अगस्तम दर हवा कर कर देम बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार करदम मम चीचनी हवाल, बद भगत हम जचू बखील गाफल, बे नजर बेबाक नानक गंद जन तरा तुरा तेरे चाकरा पा खाक, तलंग महला पहला घर दूजा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद पाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया तीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीता, तौ दर्शन की करो सुमाय, मैं दर मांगत भीखे आ पाए राम, केसर कुसुम मृग मै हर नाम, सर्व शरीरी चढ़ना चंदन भगतान जो तिन्ही, सर्व परमल करना या पाट भांडा, कहे न कोई ऐसा भगत वरण मैं हो, तेरे नाम नमै रहे लिवलाए, नानक तिन दर भीखे आ पाए, तलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद यो तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लाभ रंगाए, मेरे कंत नाम पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सिजै जाय, हाँ कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बाने जाओ, हाँ कुर्बाने जाओ, तिना कै लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाम, तिना कहो सद कुर्बाने जाओ रहाओ, काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइये नौ मजीठ, रंगन वाला जे रंगाए साहेब ऐसा रंग न डीठ, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास, आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे, तलंग महला पहला हे आनड़िए मानड़ा काहे काए करे, आपनड़े घर हर रंगो की ना माने, सौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे,

न पावै। विन करमा किछ पाइय नाही, जे बहु तेरा तावै। लाभ लोभ अहंकार की माती, माया महेश माणी। इन्नी बाती सौ पाइये नाही, पई कामने आनी। जाए पुछो सुहागनी वाहे, किन्नी बाती सौ पाइये। जो किछ करे सो भला कर मानिए, हुकमत हुकम चुकाइए। जाके प्रेम पदार्थ पाइए, तो चरनी चित लाइए। सो कहे सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए। एव कहे सुहागणी पहने, नी बाती सब पाइए। आप गवाइए ता सब पाइए, और कैसी चतुराई। सौ नदर कर देख सो दिन लेख, कामन नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागन, नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती, एन सुभाए सुमानी। सुंदर सहे स्वरूप विचखन, कई है सा सियानी। तलंग महला पहला जय सी मैं।

अगद पढ़े सैतान वे लालो। मुसलमानिया पढ़े कतेबा कष्ट मैं करे खुदाई वे लालो। जात सुनाती होर हिंदवानिया ए पी लिखे लाए वे लालो।

रहाउ। हर के गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाणा मन्या तिन घुम घुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हवारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मिटन हारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आए दे तिन जन परवाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सार तेरी उसत है जो हर प्रभ पावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावे। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन जी प्रभ नाले, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया। ओए आप छुट्टे परवार स्यों सब जगत छुड़ाया।

रहाउ। संपत रथ धन राज स्यों अतनेहो लगायो, काल फास जब गल परी तब काल फास जब गल परी सब भयो परायो। जानबूझ कै भावरे

पाप करत सुकचयो नही नह गर्भ निवारयो। जेह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कह गहो प्रभ शरणाई। तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कते विफतरा पाई। दिल का फिक्र न जाए टोक दम करारी, जो करो हाजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सिर मिला दस्तगीरी नाहे राव। रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने स्याम मूरत नाहे। इसमान माने लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मौजूद।

नाम देव जी। मैं अंदले कीटे को तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजर हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू बसिया रहा बिसियार तू तनी देह ले एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बगसंद तू हरी, हले यारा हले यारा खुश खबरी बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाऊं, कुजा मद कुजा रफती कुजा मैं रवि द्वारका नगरी रास बेगोई।

सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पै

तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़े वह सिमर सास जी कर क्रिया खटकर्म कर अंता उसे भगत पर जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता।

सत्संग काका सुमित अते बच्ची शरण कौर इन्हां बच्चों के आनंद कार्ज सतगुरु जी की मुबारक गोद विच आरंभ होने जा रहे हैं। सब तो पहला दास एक शब्द ग्रहण करेंगे अरदास वजो कीता लोड़ी है काम सुहर पै आखी है कार्ज देह सवार सतगुर सत साखी है। उस तो बाद भाई साहब जी सूखम अरदास करेंगे जिस विच बच्चा बच्ची बच्चे दे माता पिता ते बच्ची दे माता पिता ये कुल टोटल 6 लोग खड़े होंगे बाकी सारी संगत इस तरह बराजी रहेगी। उस तो उपरंत आपां सतगुरु जी पासों आग्या लेंदे हुए हुक्म लवांगे फिर पल्ले की मर्यादा होगी फिर 4 लावां दे पाठ होंगे मैं नाल नाल एक्सप्लेन करता जावांगा। सो पहला आपां सब तो सतगुरु जी के चरणों में अरदास बेनती कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखिए शब्द ग्रहण करिए जी।

0: सत्संग
1: बच्चा सुमित सैनी सपुत्र सरदार सुरिंद्रपाल सिंह सैनी बीबी सतविंदरजीत कौर सैनी अते बच्ची शरण संधु सपुत्री सरदार सरबजीत सिंह संधु सरदारनी कुलविंदर कौर संधु इन्हां दोनों बच्चों के सतगुरु जी की हजूरी अंदर सतगुरु जी की मुबारक गोद अंदर पूर्ण गुरमर्यादा अनुसार आनंद कार्ज की मर्यादा संपूर्ण हुई है। आनंद कार्ज संपूर्ण हुए हैं। असल में है मर्यादा तो असी इन्हू बनाता रसम बहुत थान तो असं कहने आनंद कार्ज की रस्म कर चले। सत्संग ते रस्म नहीं है, रस्म तो वह है जड़ी होरां धर्मां दी रीति रिवाज अनुसार मनाई जाती। जय माला पा लो जां तुसीं कोर्ट मैरिज जाके रजिस्टर करा लो, भी एक रस्म है। रस्मां ते होर धर्मां दीआं हन। सानू गुरु साहिब जी ने मर्यादा बख्शी है, सतगुरु जी ने चार लावां बख्शियां हन। असल विच इह मर्यादा है। सो बच्चे ते बच्ची दे पूर्ण गुरमर्यादा अनुसार आनंद कार्ज संपूर्ण होए हन। दस रहा वालों दोनों परिवारों नूं बहुत बहुत मुबारक। सतगुरु मेरी रामत करन, बच्चे ते बच्ची नूं गृहस्थ जीवन दे सारे सुख प्रदान करन, अपने दर घर दा प्रेम प्यार ओट आसरा बख्शन, दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन की दात बख्शन, यही अरदास है। सो आओ विया होआ मेरे बाबला, पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, दो शब्द दा पाए गैण करके फिर कीर्तन की समाप्ति करांगे। साढ़े बहुत सत्कारयोग भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले, असल विच ये ग्रंथी नहीं हैं, सत संगत कथावाचक हैं। इन्हां दी ड्यूटी लगी है ग्रंथी सिंह की ड्यूटी निभाउण दी। विद्वान बहुत हैं ते ये बड़े ठहराओ नाल बड़े विश्राम दे के बड़े ढंग नाल इन्होंने पाठ किए हैं। हुक्मनामा साहब भी पूरी तरतीब वाइज पूरा विस्थार पूर्वक लिया है। तो कई बार जो विश्राम सही ना लगन पाठ दे तो फिर अर्थां दे भी अनर्थ बन जाते हैं, अर्थ भी नहीं सही होंगे। तो ये कथावाचक है, इन्हों पता है कितने ठहराओ देना है, कितने अर्ध विश्राम है, कितने फुल विश्राम है। इन्होंने सेवा निभाई है, इन्हों का भी धन्यवाद है। दस रहे भाई सुखजीत सिंह कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब, साड़ी सेवा लगी है आनंद कार्ज की मर्यादा निभाउण की। सो सतगुरु मेहरामत करन, ये साढ़े सारिया वालों ये शीश है। दोवां परिवारों में परस्पर प्यार बख्शन, बच्चों नूं गृहस्थ जीवन के सारे सुख सतगुरु जी की झोली में पाउण। आओ सारे मिलकर दोवें शब्द पढ़ के फिर आप समाप्ति

प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा नानक सतगुर भेटे पूरी होवे जुगत

ज्यों जानो त्यों मोए रखो। मोहे मछली नीरा तुम, मोहे मछली तुम नीरा, तुझ बिन क्यों सर, मोहे चात्रक तुम बूंदा, त्रिपताओ मुख पराय, मुख परे हरे प्यास मेरी, जी आ प्राण पते, लाडले लाड लडाए सब, मैं मिल मारी होए गताए। चीता चितव मिट दारे ज्यों आस चकवी, दिन चरै नानक प्यम पै प्रय संग, मेली मछली नीर ना विसरै। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, सोहै बंक द्वार सगला बन हरा।

चरण रसना राम प्रभ भगत वचरण सिवई काया का ग्रसना राम काया का ग्रसना राम ब्रह्मोही दुख ना जानई कोट जूनी पसना राम नानक बिना रवर जे चाह नाम पिष्टा किरम पसमा राम लाए बिरह भगवंत संगे होए मिल वैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईते उतना डोली आए

गुण गावत गोविंद के सबे छुप जामी राम नानक उदरे जा परे सबों का स्वामी राम रास भिन्नड़ अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रापिगत इच्छा पुनियाम साजन जी के राम अमृत रस हर पाया विख्या रस फीके राम नानक जल जले समाया ज्योति ज्योत मीके राम बलावल की वार महला चौथा एको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग पदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहण गुण उचरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान देरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चुराग जन नानक जी वे देकार एक निमक कड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे राम रागनाद शब्द सोहणे जान लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवियै तां दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारियै चूकै मन अभिमान पौड़ी तू प्रभ तू हर प्रभ आप अगम है सब तो देव पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सुभाया तुदे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतो दनसरा दे अंत लय छुड़ाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे भाई बिलावल ना हो वही मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने थाए ना कोई पाए नान गुरमुख आप बिचारी है विचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जमन मरना कटे आ ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक स्यों लिवलाए जन्म मरण दो कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुर पाए सत संगति बह भाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना विच सबना जिया विच हर आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ निसल जन टांग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चेतकार तुध अपड़ कोई न सके सब झक झक पवे झाड़ श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चले सतगुर पाए

इस जुग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिनको नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिव लाए महला तीजा।

अचर चरेतना निर्मल होइन गर्म खिहे मन लिया सुभार होम में बिचो तजे बकार जो तरफ रखिया मेल मुलाहे कदे न बिछड़े शब्द सुमाए

पाहे परम पलानां बोचंता चतबे आपना पिशन्नां तंदा करत्यां अंदन बहन्नां हरदे राम रमो मेरे पाई कर्म रसना हर रसन रसा।

प्रभुपाय है भुखे प्रीत होवे अन खाए गौर सिख प्रीत गौर मेल अगाए हर दर्शन दे हर पास पास तुम्हारी कर कृपा डोच पुर हमारी रहा चाकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारे सब दुख त्यागे गौर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बसरे प्रीत खीर मुख खाहे हृदय बसे देखे माहे गौर सिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सा प्रीत माया मोह कच्चा बिन सजाए।

हर राख मेरे एक सैयान, जन की उपमा तुझे बड़िया रहा, मंदर कर अंदर हर हर जस मन पावे, सब रस मिठे मुख लागे जा हर गुण गावे, हर जन प्रभा सुधार है इक्की कुली सब जगत छुड़ावे, जो कुछ किया सो हर किया हर की बड़ियाई, हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कुलाही, हर भगत भंडार वहंदा आपे बरताई, लाहा हट बहजिया क्या तिश्चित राही, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कुड़ाई, जन नानक हर कौ दास है हर की बड़ियाई, गौड़ी बरेरी महला चौथा, करसानी करसान करे लोचे जो लाहे, हाल जोते उद्दम करे मेरा पुत तीखाए, तो हर जन हर हर जप करे, हर अंत छुड़ाए, मैं

माया मोह बुधावे तो हर जन हर हर बोल तांग हर बोल सुख पावे बिख संचे हट बाणिया वह हाट कमावे मोह झूठ पसार रह झूठ का झूठे लपटाहे तो हर जन हर तन सचिया हर खाच लै जाए।

कह के थे हर पैन हसी गए हर का पे बख्श ले प्रभ सच्चा हर का पिछड़ाए छुट गए मेरे मन जापू हर हर हर मन जपिए सतगुरु की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पेशा छुट गए रहा मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुखदाता जे सेविय निज घर बसिए गुरमुख जाय लहो कर अपना कस चंदन हर जस घसीए मेरे मन हर हर हर हर जासी उत्तम लै लाहा हर मन रसिए हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चाखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साखत नार जम घुटिए ते साखत चोर जिन्ना मन बसिया मन तनके निकट ना भेटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेविए लेखा छुटिए ज नानक हर प्रभु पूरे किए खिन मासा तोलना घुटिए गौड़ी पूरे मोहल्ला चौथा मेरे प्राण बस कर

हर मंत्र दिया मन ठाणे राम हम सतगुरु सहले कंडे ह्रौं हम रे मचकुंदा दुगन्ना हम कार्य गुरु बसंडे पर विकार विपन बाकिया पौधोत्तर दार बनंडे जन को प्रीत दिंग हर नाही तन कूरे कटन कांडे जो प्राणी कागदो बिन सुजात है तो मन होकर गुलंडे

श्रुत नाहि जन दिया ने था वे को था न जन दिया ने माने को मान जन के निशा पूर्ण आशा सिमर दिन रहन सा गिरासा जिस पर साधु माया

सो गुराजा ने साच कहे सो बिखाए सो माने जान नाही जीते रहारू ए बले वसा के संसार सो जो हल्ला हल सो पीवे बौरा अमर

मंत्र अर्पित सेव करी जय कावन सो जुगत जत कर पी जय पाय लगो तज मेरा तेरा कवन सो जन जो सौदा जो रह मल सा का कन पावे कवन सो भेद जत पितर बोलावे तू बड़ साजा के कोट बनजारे कवन सुदाता ले संचारे खोज खोज निज कृपाया मोर रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले स्वाहे कौना ने गुर के बे साहे गौड़ी ग्वार महला पंजमा गौड़ी महला पंजमा ग्वार रे राम दिन सु रहे करंगा प्रभु को जान सरे संगा ठाकर नाम की ओन वर्तन त्रिवत अघावन हर कै दर्शन हर संग रात मान तानु हरे गुरपुर

पंचमाम व्यापत हर्ग शोक विस्तार व्यापत स्वर्ग नर के अवतार व्यापत तन निर तन पैक शोभा मोर व्यादि व्यापत लोभा माया व्यापत भाव परकारी संत जी में प्रभुट तुम्हारी रव व्यापत हो बन का माता व्यापत पुत्र कलतर संग राता व्यापत हस कोढ़े आर बस्ता व्यापत रूप जो बन मध मस्ता व्यापत भूम रंग अर रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा

पद दाका नाम आधार सर्व्यापद पूर्ण तने जाके शोभा काट काट बने जस मृत डेरा टाये जस मृत के छो ना कह जस मृत हो तो सुख कह हरे जस सिमरत डूबत पांतर संसवा को सदा जयकार हर नाम जन प्राण आधार कौ नानी मेरी सुने अरदास प्रसाद मको नाम निवास गौड़ी गुआर रि महला पंजमा

परवासा जाकी ब्रे सदा सुख होए नानक गावे गौर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत कर सोई हमाना मीत के करतव कुशल समाना कट को मेरे मन चीत जैसे किच करना

सुने हर कीर्तन गावे ते जन दुख नेक नहीं आवे। हर की टहल कर तुझाने सो है ताको माया अगन न पोहे मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिले अवर दंजाल गौड़ी महला पंजवा छा।

काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाशे सगले विकारी, पात मत खोवै नाम विसारी, पार कर चीत मन मुख डोलाए, गल जिरवीरी धंधे लपटाए, गुरमुख छूट हर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पिर तृप्त न कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद प्राण पड़े सुन थाटा, बिन रस राते मन बहनाटा, ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल महे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरै न लेखे पावै, बेस करे बहु पास

ज्ञान विचार बिन उपमा जगदीश की बिनसै न अंधियारा जग बिन सत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल पार को अम्परम्पर सोई बिन

सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ लै तो होए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न छूटिए देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहा अंधे अगली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ न सूझई कित

जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता आवत को जाता कहे जाते को आया परकी को अपनी कहे अपनो नहीं पाया।

बिन नामे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उतरस पार, साचा मरै न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जीव राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साच द्वारा, पंडित हड़ पड़ तजो वेकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाव, गुरमुख विचों होम जाए, गुरमुख मै न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाई दोई, गुरमुख नाम हृदय सुख होई, अपना मन प्रबुद्धो बुझो सोई, लोक समझावो हो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डाभ बहुत चतुराई, जो किश कमावै सो थाए न पाई, आवै जावै ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहे नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई,

जब इसते सब विन से भरमा भेद नाही है पार ब्रह्म जब इन किछ कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किछ सूझया जब ए

मन मंदिर में दीपक जल्यो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किछ एक है आपे बुद्ध विचार विवेकै दूर न नेरे सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरु सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हृदय रव्या सोय मन तन शीतल निश्चल होय।

बैठाए। जास जबत फिर दुख ना लागै, जास जबत ए होमै भागै, जास जबत बस आवै पंचा, जास जबत हृदय अमृत सांचा, जास जबत ए तृष्णा बुझै, जास जबत हर दरगै सिजै, जास जबत कूट मिटे अपराध, जास जबत हर होवै साध, जास जबत मन शीतल होवै, जास जबत मल सगली खोवै, जास जबत रतन हर मिलै, बोर न छोड़े हर संग हिलै, जास जबत कई बैकुंठ वास, जास जबत सुख सहज निवास, जास जबत ए अगन न पोहत, जास जबत ए काल न जोहत, जास जबत तेरा निर्मल माथा, जास जबत सगला दुख लाथा, जास जबत मुश्किल कछ ना बनै, जास जबत सुन अनहत तुनै, जास जबत ए निर्मल सोय, जास जबत कमल सीधा होय, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना सो